सा मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। डिवोटी सिंग्स टू द लॉर्ड, ओ लॉर्ड आई एम अ चाइल्ड, आई एम पुअर, आई एम हेल्पलेस, एंड यू ऑन द अदर हैंड आर ह्यूज एंड जाइजेंटिक इन फॉर्म, एंड आई हैव कम टू यू विद वन रिक्वेस्ट एट हार्ट, ओ लॉर्ड प्लीज प्रोटेक्ट मी। I am confident that you will do so, though I may be sinful, though my life may be filled with the blemishes of the world, but I am yet your child. I have come to your doors today, hey Prabhu, with tears in my eyes. Only your name, only your darshan, only your blessings will relieve all the pains and sufferings of my life. Only you, O Lord, will enable me to attain that state of eternal bliss.

रख लाज मेरे सिंदूर की, शिव शंकर की प्यारी गौरा पार्वती। अ डिवोटी सिंग्स टू पार्वती माँ, ओ मदर प्लीज प्रोटेक्ट माई ऑनर, यू हु आर द डियर कॉन्सर्ट ऑफ लॉर्ड शिव। मैं दुखियारी सब कुछ हारी, आई शरण तिहारी। इन माई सफरिंग स्टेट ऑफ माइंड एंड हैविंग लॉस्ट एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, I've come to you for your protection, you who are ever dear and kind to all those who seek refuge at your lotus feet. Please protect me, O Maa.

बाजे मधुर मुरलिया इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग इन द फ्रेग्रेंट फ्लावरी फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन अमिडस्ट द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड द जेंटल कैरेसेस ऑफ द सूदिंग विंड द इंटॉक्सिकेटिंग ट्यून ऑफ द बांसुरी ऑफ श्री कृष्णा resounds again and again to the delight of every heart. Dar na jaane, peer na jaane, the body is instantly rid of pains and the mind of fear. Meera too experiences this inexpressible bliss as these magical notes reach her ears and to her Krishna, to her Kanha, she sings.

प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

गायन चाहि दीन परुने हो करो कृपा मर्दन वयन बंदहु गुरु पद कंजे बंदहु गुरु पद कंजे बंदहु गुरु पद कंजे।

एनीवे यू गो हरि ओम नारायण नारायण दिव्य पाशुक भगवान श्री राम नेम आई सीन दैट रिसेंटली जय सीताराम वो सीन अ स्माइल द पीपल आर ओमनिपोटेंट आई से दैट योर माइंड भगवान प्लीज ब्लेस दिस पर्सन ही डजंट नो हाउ टू बी एन इंडिपेंडेंट डिवोटी ही सॉ दिस बीजामिंग नारायण नारायण रघुवर जन्म अनंत बधाई अनन्य कम अनन्य साइड हु कैन सी दिस रिमाइंड इंटेलेक्ट यू आर रियलाइज द सोल आनंद कम पीसफुल इनसाइड दैट हैप्पी

उमापति महादेव की जय हो। और प्लीज स्टैंड एवरीबॉडी, वोट फॉर सबको, प्लीज स्टैंड फिफ्थ आरती और लॉग्ड इन द चिडियर बी लाइटिंग दिस पॉइंट इन टाइम ऑफ भगवान श्री राम फ्लव एंड आरती। लेट भगवान श्री राम ब्लेस योर फैमिली, पेरेंट्स प्रे फॉर योर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्रे फॉर योर पेरेंट्स एज वेल, नेबर्स प्रे फॉर ईच अदर। श्री

तो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भार कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कब इधर भगे कभी उधर भगे फिर तुमने दिया ये फान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान।

संतोषी मां की महिमा अपार है हर भक्त ने उनकी महिमा का गुणगान अपने अपने ढंग से किया है इस चित्र की कथा भी कुछ धार्मिक पुस्तकों और लोक कथाओं के आधार पर है आशा है आप इसे सच्ची भावना से स्वीकार करेंगे जय संतोषी मां

सनातन धर्म की जय। सकल पंच की जय। जय सीताराम। शिव स्वागतम। मोस्को दिल वेलकम माय डियर फ्रेंड्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू दिस इवनिंग्स डिवोशन द फर्स्ट ऑफ थ्री नाइट्स डेडिकेटेड टू द यूनिवर्सल मदर इन द फॉर्म ऑफ आदि शक्ति देवी माता। द प्लेजर इज माइन टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर श्री रुद्र मंदिर एंड ऑफ कोर्स आवर ऑफिशिएटिंग पंडित पंडित देवानंद श्रीराम महाराज along with the Shrotas, Sherry, Sean, Nisha, and we have with us Uncle this evening. So with this in mind, Uncle Omish. So with this in mind, let us all stand as we take part in our commencing Shri Devi Aarti. Sab kara ho jai, Aarti ke liye.

प्रेम से बोलो श्री आदि शक्ति देवी माता की जय। अपने आसन लीजिए, प्लीज टेक अ रैपिड सीट, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। देयर आर चेयर्स अप ऑन इन फ्रंट माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फील लेफ्ट ऑफ एंड सिट दैट यू हैव टू सिट बिहाइंड। देयर इज अ लॉट ऑफ चेयर्स इन फ्रंट दैट इज वेकेंट, सो फील फ्री टू कम अप एंड फाइंड योर चेयर इन फ्रंट एंड हैव अ सीट विद अस क्लोज and up near. With this in mind, my dear friends, I pass over the mic to Sherry to do her opening remarks and sentiments. Welcoming each and every one of you here this evening to this our first of three nights of Devi Puran Jag, dedicated at this time to the Universal Mother in her major manifestations.